0: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দিবাহ রাজ্যে গাটুকে মেগাডিকে খাবার এখন বদল করলি আলগন্ড আজিজা ফারুক। দাল মেদো কাউন্সিলকে রাইস মগামাং আলং ইন্তিখাব পিএনসি গে ক্যান্ডিডেট সুহা ইব্রাহিমা রাইসল জমহুরিয়া ডক্টর মোহাম্মদ মুইজ মারহাবা বিজে। সোশ্যাল মিডিয়া গা হিসা করবি পোস্টে গা এমন ফানবানি দাল মেদো কাউন্সিল রাইস কে মগামা পিএনসি PNC ke faratum wada kurevvi Suha Ibrahima marhaba vidalwefa adiraiswani vote devvi e daira gira yitunna intihab kamyab kuruma masekke koddevvi emmeha faratta shukur wada kurawafa mi intihab ga noste ka addiha fasmi humwani vote lafa waguti natija dakka gotum PNC ke candidate Suha Ibrahima fasate ka nawa vis vote wani libifa adi MDA ke candidate মোহাম্মদ শাহিদ ওলিফাওয়ানি হাতরস্তেক সালিস নুয়া ভোট দাল মেদো কাউন্সিল রাইসকে মগাম গে ইতুরু বুরে নিগুমন নিম্মি লোকাল কাউন্সিল তৌগে ইন্তিখাব দেহা সাব্বি হুগা এরশুগা বেহেটি দাল মেদো দে নম্বর ভোট ফুশিগে মেদো দায়রাগে এ ভোট কর্দা সহকম কণ্ডালা হুকুম কুরুমা গুলিগিং কাউন্সিল রাইসকে মগামা ইন্তিখাব কুরঞ্জেহে মেম্বরুঙ্গে আদদাবুরে গিনা আদদেগে ক্যান্ডিডেট উন্না লিবিফাওয়া ভোট এভ্বর ইফাওয়াতি দিফাই আদি ওয়াতানি খিদমতা বেহে ওয়াজির হাসান রশিদ MNDF সদন এরিয়া গা গাইম কোফাওয়া গান এয়া স্টেশন গে মাসাকে তাব্বালাওয়ালা ব্যাফি গান এয়া স্টেশন ওয়াজির কুরেবি মি জিয়ারত কি মিওয়াগুত গাউমি দিফাই বারুগে সদন এরিয়ায় ওয়াজির কুরাব্বামুন গেন্দাওয়া জিয়ারত গে তিরেগা হিমেনিগেন কুরেবি জিয়ারতে দিফাই আদি ওয়াতানি খিদমতা বেহে ওয়াজির হাসান রশিদ MNDF সদন এরিয়া কমান্ড গা গায়ম কুফাওয়া MNDF এয়া স্টেশন কুরে বিজিয়ারত গা এতনুগা মাসেকে কুরাওয়া MNDF কে এয়া কাগোগে সিফাই নাওয়ানি বদল কুরাওয়াফা আদি রাজ্যগে সরহদ বেলহেটুমা এয়া কোয়িং হিঙ্গামুন্দা অপারেশন তৌগে মাউলুমাত ওড়ুম ফিলুয়া অপারেশন তাওয়ানি বল্লাওয়ালাওয়াফা মিগেতুরুম ওয়াজির ওয়ানি আড্ডু সিটি গামুগা হুন্না MNDF সদন এরিয়া কমান্ডার বিস জিয়ারত কুরাওয়াফা মি জিয়ারতুগা এ কমান্ডুগা মাসেকে কুরাওয়া সিফাইনা ওয়াজির বদল কুরেবি আদি এ কমান্ডুগে তারগিয়া কুরামুন্দা মাসেকে তা ওয়াজির হাসান রশিদ ওয়ানি বল্লাওয়ালাওয়াফা মি জিয়ারতুগে তেরে মিওয়াগুত সদন এরিয়াগা মাসেকে কুরাওয়া সিফাইনা দতিওয়া কান্তাতাকা গুলেগুতুং মাউলুমাত ওড়ুম ফিলুয়া মশওয়ারা কুরাওয়াফাবে সাউথ মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া সম্পা সরহদ ফুলহু মেদুবেরি কোব্বালহট্টম ফাশা ফাওয়া কমা মৌসুমি বদল তক থিমাবেটা হকতয়া বেহে উজারাম বিদাড়ুজে দিবাহ রাজ্যগা হিমায় কোফাওয়া কণ্ডুগে এম্মে বড় সরহদ্দুগে গুতুগা হিমেনে সম্পা সরহদ্দকি আহরুগে হুরিহা দুয়াহ কুয়েস ফেহুরিহ ফেন্ন দুনিয়েগে ফেম্বরুগা ফাহ কোল্লেবে মুহিম সরহদ্দে মি সরহদ্দ কোম্মে আহরকু এতহাস ফতুরুবেরিনে জিয়ারে কুরে সরহদ্দু বড়ুমা এতন ওয়াদে নিকুমিবেনে গিনা মগুতকে হুরুমুগে সাববুং আদাগে গোয়ত্তক মি সরহদ্দু বেলহেটুমকি ইদারি গোতুং কুরিমতিবা বড়ু গঞ্জে হুমেকমা এবুজারা বিদাড়ুবে মিহার মিবানি মি সরহদ্দু বেলহেটুমগা হরকায়তিরুবা রেঞ্জারু নায়কু ফুলুহুমেস হরকায়তিরুবাম ফাশাফা তিমাবেটা বেহে উজারাম বিদাড়ুবি দেগুণ আরিয়তুড়ুগে হিমায় কুফাওয়া সরহদ্দু সম্পা বেলহেটুমগে মাসাকাতুগা দিবেহি ফুলুহুঙ্গে খিদমতুং রেঞ্জারুনা গুলুমকি লিবে ওয়ারাবোডু উফাদেক্কামা তিনদু সিটি ডক্টর আব্দুল সামদ মেমোরিয়াল হসপিটাল গা ফুরতম ফাহারা আংহেনুঙ্গে রাহিমজ্জেহে বালিতহুগে সাজিরি কোফি মি সার্জারিয়কি সিহতা আইলায়া ইজতিমাই এহিয়া বেহে উজারায়া আব্দুল সামদ মেমোরিয়াল হসপিটাল গুলিগিং হিঙ্গা ক্যাম্পেগে তেরেং কুরিয়া গেন্দিয়া সার্জারিয়ে মি ক্যাম্পগা একি বালিতক খাস দিহ ডক্টরুম বানি ব্যাহবেরিবেফা এ হসপিটাল উমিদাড়ুবি মি অপারেশনগা ওয়াফরাত ওভারিগা উফেদিফাওয়া সিস্টেন নেগুমা পেলোপিয়ান টিউবগে ফাইব্রোমা নেগুমগে মাসেক্কে কুরিয়া গেঙ্গোসফাওয়াকম মি এ হসপিটালুন সিহি হিদুম দিনুমগা হোদি ফাহাকলিবে মুহিম্ম কুরিয়েরুমে লেপরোস্কোপিক গাইনোকোলজিক সার্জারিয়কি বানুগে ফারুগা হদা কুদি লোওড়তকে গেতেরেং হিমা আলিগদ ক্যামেরায়কা কুদি আলায় তব্বেনুকোগে আংহেনুগে দারিমায়ুমা বেহে গুণবন্ত কদ্দে ফারুয়ায় ದಾಲ್ ಮೀದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈ ಸೌಮ ಬೇವಿ ಇಂತಿಖಾಬ್ಗ ವೋಟ್ಲುಮ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಫಾವಣಿ ಫುರಿ ಹಮಯಕಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎಚ್ಆರ್ಸಿಎಂ ವಿತಾಳುವೆಚೆ ಇಂತಿಖಾಬ್ಗೆ ಕಂಕಮಾ ಗುಳಿಗಿನ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ನೆರುನು ನೂಸ್ಪಯಾನುಗ ವಿತಾಳುವಿ ದಾಲ್ ಮೀದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೈಸ್ಗೆ ಮಗಾಮ್ಗೆ ಇತುರುಬುರುಗೆ ವೋಟುನೆಗುಂ ದೇಹ ಸಬ್ಬೀಹುಗ ದಾಲ್ ಮೀದುಗ ವೋಟುಲಿ ದೆ ಮರುಕಜಕ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗ ವೋಟುಲಿ ಮರುಕಜ್ಗೆ ವೋಟುನೆಗುಮ ವೋಟುನೆಗುಮುಗೆ ಕಂತತ್ತ ಹಿಂಗಾದಿಯಗೊ ಎ ಕೊಮಿಷನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಕೊಫಾವಾಗಮ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತದ್ದೆ ಮಿಂವರು ಮೊನಿಟಾ ಕೊರುಮಕಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಮಿಷನ್ಗೆ ಗಾನೂನುಗೆ ದಶುನ್ ಲಾಜಿಮ್ ಕೊಫಾವಾ ಕಮಿಕಂ ಫಾಹ ಕೊರವ್ವ ಎ ಕೊಮಿಷನು ವಣಿ ಸೀದಾ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಬ್ಯಾವಿರುವುಂ ಉನ್ನ ಮಿನಿವಂ ಇನ್ಸಾಫ್ ವೆರಿ ಹಾಮಕೊಂಬೊಡು ಅದಿ ಇತುಬಾರು ಕುರಣಿವಿ ವೋಟೆತ್ತೋ ಕಶವರು ಕುರುಮ ವೋಟುಲುಮ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯದ್ದಿಯಗೊಯ್ ಎ ಕೊಮಿಷನು ಬಲಾಫಾವಾಣೆಕಮ ವಿತಾಳುವೆಫ ಅದಿ ವೋಟುನೆಗುಮ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಮಾಯಗಂಡು ಗೊತೆಗ್ಗ ಕುರಿಯಗ್ಗೆ ಗುಸ್ಫಾವಣಿ ಸುಲ್ಹವೆರಿಕಮ ಅಮಂಕಮ ಉಮಂಕಮ ಎಕುಗಾಗಮ ಎಹೆಂಕಮು ಎಕಂ ಕಶವರು ಕುರುಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಮಿಷನು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಫಾಹ ಕುರವ್ವಾಕಮ ವಿತಾಳುವಿ ಪೆನ್ಷನ್ ನೊಫಿಹುಗೆ ಸಿಇಒಗೆ ಮಗಾಮ ಕುರಿಮತಿಲುಮ ಅಲುಂ ಹುಳುವಾಲಫಿ ಪೆನ್ಷನ್ ನೊಫಿಹುಗೆ ಸಿಇಒಗೆ ಮಗಾಮ ಕುರಿಮತಿಲುಮ ಮಿದಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹು ಪೆನ್ಷನ್ ನೊಫಿಹು ಹುಳುವಾಲಾಫಾವಣಿಕೋ ಮಿದಿಯ ಮೇ ಮಹು ತಸ್ತಿಗು ಕುರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನುಗೆ ಹವನ ಇಸ್ಲಾಹ ಗುಳಿಗೆ ಎ ಮಗಾಮ ಅಲುಂ ಮಿಬಣಿ ಕುರಿಮತಿಲಾಂ ಹುಳುವಾಲಾಫ ಪೆನ್ಷನ್ ನೊಫಿಹು ಹಾಮ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಅಲ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರ ಸಿಇಒಗೆ ಮಯಗಂಡ್ ಉಸು ಮ್ಯಾಗಂಡ್ ಮಸೂಲಿಯತಕಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೆಹೆ ಗಾನೂನಗೆನ ಇಸ್ಲಾಹುತ ತಂಫೀಜ್ ಕುರುಮುಗ ಇಸ್ತೌರೆನ್ ಅದಾ ಕುರೆವ್ವು ಮೀ ಎ ಮೊಸಸಾಯ ಅಣ್ಣಮುಂದ ಮುಹಿಮು ಬದಲ್ ತಕಾಯಕು ಒಫೀಹುಗೆ ಹಿಂಗುಂ ಹರ್ದನ ಕುರುಮಲ್ಲಿ ಬೇ ಮುಹಿಮು ಫುರ್ಸತೆ ಕಂ ಎ ಒಫೀಹು ಫಾಹಕುರೆ ಮೀ ಗೀತುರು ಗಾನೂನಿ ಬದಲ್ತ ತಂಫೀಜ್ಕೊ ಮೊಸಸಾಗೆ ಇದಾರಿ ಹಿಂಗುಮಿಗೆ ಜಿಮ್ಮಾತ ಉಫುಲ್ಲೆವುಮ ಸಿಇಒ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆವೇನಿ ಫಸ್ಸಹರ್ದುಹುಗೆ ಮುತ್ತತ ಗಡಿ ಮಿಹರ್ ನುವಗಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಮ್ಮಿನೆಟ್ ವಿಹಿಸಿಕೊಂತು ಮೀ ಇದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ಗಜ್ಜಾಗ ದಾಯಿಮಿಕೋ ಹಮಲಾತ ಹುಟ್ಟಾಲುಮ ಕುರಮುಂದ ಮಶ್ವರಾತಕ ಹುರಸಳಂ ಗಜ್ಜಾಗೆ ಹುಳಂಗುಂ ಯಹೂದಿಂಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾರ್ ಫುಳಾಕೋ ಇತುರ್ ಸರಹದ್ದುತಕ ಅಗ್ಗದ ಕುರಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾಕಮ ಗಜ್ಜಾಗ ವೆರಿಕಂ ಕುರ ಹಮಾಸ್ ಜಮಾತುಂ ಬುಣಿಫಿ ಗಜ್ಜಾಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾರ್ ಫುಳಾ ಕುರಂ ಯಹೂದಿನ್ ರಾವ ಮುಂದಣಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ಗಜ್ಜಾಗ ಹಮಲಾತ ಹುಟ್ಟಾಲುಮ ಮಿದಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹು ಅಲುಂ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಪಶಾಫಾವಾ ಇಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ದೇವಣಫಿಯ ವಹಿಗೆ ಮಶ್ವರಾತ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಮಂದೂ ಬುಡ್ನಾಯಕು ಬಿಕಮುಗ ಮೆದುವೆರಿಯಗೆ ದೌರು ಅದಾ ಕುರಮುಂದ ಗೌಮ್ತವ್ಗೆ ಮಂದೂ ಬುಡ್ನಾಯಕು ಮಿಸ್ರುಗ ಕುರಿಯದ್ದ ದಣಿವಳಿಗ ಮಿಗುತುಂ ಫಾಯಿತುವಿ ದೋಸ್ತವ್ಗ ಯಹೂದಿನ್ ಇಸ್ತಿಮಾರ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಸರಹದ್ ವಕಿಕುರಂ ದಮಾಫಾವಾ ರೀಂದೂರೊಂಗು ತಿನ್ಸತೇಕ ಮೀಟರು ಎತೆರಿಯಂ ಮಿಹಾತನ ಜಸ್ಸಾಫಾವಾ ಕಮ ಹಮಾಸುಂಬುಣಿ ಎರೋಂಗು ಖಂಡಾಳ ಏಗೆ ಫಹತ ಯಹೂದಿಂಗೆ ನಿರುಪವಿರ್ ಫೌಜ್ ಜಸ್ಸಾಫಾವಣಿ ಹಮಲಾತ ಮೆದು ಖಂಡಾಲ ಮಿದಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹು ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫೆಶಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ಪುರತಮ ಮರ್ಹಲಾಗೆ ದಶು ನಮವೆಸ್ ಯಹೂದಿನ್ ಬಣಿ ಎ ಎಬ್ಬಸುಮ ತಕುರಾರುಕೋ ಖಿಲಾಫ್ ಮಿ ಖಬರಾಯಕ ದಿವರಾಜ್ಯ ಗಡುನ್ ದಂಡಮುಂಗ ಖಬರ್ ದಂಡವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆಂ ಎಂ ಎಹ ಖಬರ್ ದಂಡಮಾದೇನಿ ಮೆಂದುರು ಕುರಿ ಎಗಾರ ಚಹಾಯರು ಖಬರೊಡಸುಮ್ಗ ತಿಹೇದ ಕೊಲ್ಲೆ ವಕ್ತುಗಳ ಶುಕುರ್ ದಂಡಮ ಅಮಾನ್ ರಕ್ಕಾ ತಿರ್ದುವಹಕಂ ಇದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮಲೈಕುಂ
1: ಅಂಗಾದಿ ಉಂಗಣ್ಣಾದಿ ಮುನಿ ಫೋಯ್ ಫಿಲುವಾ ದಿನುಮುಗ
2: ತೆದುವೆರಿ ಕಮ್ಮಾಯಕು
1: ಎಕುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
2: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಗ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबाय वायरु बिल नु देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुझे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे मा फाहि।
3: टेक के दुनियां अलगन में कोम में हफ्ता को मिकुरा दतुरता नीमे दुआ हा वारा कैबेज। अलगन में कुरा कोम में दतुरा की इमी दतुरता नीमे दुआ हा अलगन में ना बदलवा दोस गैक को दे दतुरता के। टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा एंग बोटे ते कुंफिन तक उंगेन्ना मुंदा बदलता का बलानुला दो कोल्दो मकी कुरा मानवर के कमेंट नू। मी हफ्ता है हास टेक के एम एफओ के खबर तंग अडो हाल तिया हुन तेरिन तैयार तो तैयारिया खबर फर बतांगेनिस्ते खबर तंग अडो हाल मा
4: खबर

0: टेक टॉक्स
1: में प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तो दक्कम फसे है गोते मियोती फाहिपे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोला देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट है देने मस देबा वायरो बिल नो देखी गेंग लारिया वीनुए नेंगी गेंग उड़े कर नुचे है ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माफ है
0: टेक टॉक्स
3: टेक्नोलॉजी के बोर्ड दी कुंफनी तकुं अबदुस्तानी अलगन मेंगे दुवही दिरिउल म फसेह कुरमटका एकी कहला ईजाद तका ए ईजाद तका एकी बदल तक गेनमु टिकटॉक्स के प्रोग्रामाय को अलगन मेंमि कुरमुं गे दा दतुरत निमुमकन अन्न वरक कैबेज एहेमि म अलगन में कुरम बाकी ओई दतुरता की हिग्गैम आदि फायदा होरि दतुरता कन हेदुमा टिकटॉक्स के टीम मितिबि तैयार एहुं तिरिम वेस तैयार तिबेनकम उम्मीद कुरम मेदुगे दतुरुं अलगुण मेंना टेक्नोलॉजी या साइंस के गुरहां एकि दिमालुं तफात ईजातका कुंफनितकुं ईजातका गेन्नमुंदा एतके फन्नी बदलतके फेनी आदि अडवे सिविचे नमेस मेदुगे दतुर निम्माला अमुरा अलगुण मेंगे दुनिये दां दतुर फशन जेह वगुतु मिवनी जेहिफा टेक्नोलॉजी या साइंस के आलीगा इंसान होदमुं अन्न तफात कुरियरुं तका इंसानी आदका दे टेक्नोलॉजी के सबबुं अन्न इंगिलाबी आ बदलतहुगे मालूमात तका एमएफओगे खबर त होदमा अन्न हफ्तागवेस अलगुन मेन्नाको टेक के दुनिया दतुर कुरमा तैयार बेकिन तिपेने कमा उम्मीद कुरं हुरिहा हेन तिरिनवेस बाजवेरी वगुत कोलका इदमुं बकिवेलं वस्सलामु अलैकुम

0: हांगार अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे देगड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकने दिवे ही राज्य चाड़ू राज्य के कोमे हिसाबे गहुरे के विस एविस आगे देखो मकानुला पीएसएम के चेरलता फोनु अड़ो हाला बलालुमा फसे हगोते
2: पीएसएम एया
3: दिवे राज्य के अड़ा दीनु के अड़ो अधि दिवे ही एफएम विस अड़ो हाल वेने
1: टीवीएम यस टीवी अधि पीएसएम न्यूज़ बलालुमे
2: पीएसएम एया
3: आईओएस अधि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करवेने
1: पीएसएम एया
3: आवाह फोन डाउनलोड करवा

जर्मन में दिखने ब्राउन आ रहा है एरिया तेरे तेरे कुरुण तेरे कोमेस वे का हमें कालवाल ने रेफरी बाहर देख के आने से मिहिंग आम को कोनेर नगर फुदेर के का कोने का दमा कुरिमती बाद दा एक तं आम को उड़े न दें तं तं रेफरी फिरोनी कुरुण तेरे नवाह दखा है ब्राउन नगा दिन बोला गोल दे रहे थे कीपर पंच गोल दे बोले एरिया बेरम फेंडर जेजे पेनल्टी खाना दिमाग बोला अत्ला कुरुण तेरे अनेक कैसे जर्मन के हैं कुरुण तेरे तंगोले फाहत दिन बोला अत्ला मिलने वीट्स अत्ला पेनल्टी कुरे दिन बोला फुन्ना बुकुरे देव तमसे कुरे मुसालिया है ने बस जहाँ अनेक कैसे कुरुण तेरे अत्ली बोला दिमाग फरक करा से कुरुण तेरे मध्य बोला देव तमसे कुरे कुरे साह कुरुण तेरे तंग जर्मन कुरुण तेरे मिफार्स बोल जेत तमसे कुरे मुसालिया है ने जर्मन कुरुण तेरे अनेक कैसे कोनर का बेल कुरा से कुरुण तेरे मी कोनर का बेल पर देवर कोनर मी जर्मन है मुसालिया बोल जहां फैम मराद मराद ओबा कारे दिया प्रसाव कुंत्रिया बेल को लिखो जर्मन के हकुंत्री गोल दे तेरे के बोल कुंत्री को रदे जर्मन कुंत्री नगा दिन बोल पूरे कनाल कोना रख के मिफार्स बोलूं कुरिया फोन आ पेनल्टी रहते हैं फेन जी फा प्रसाव के सनसेट है ना कुरिया फोन वाले बोल पेनल्टी में बेर में मिफार इल्ल में कब बेर आशाविस मेट कुलेफ मिहार मती फुर्तमाफ जर्मन के प्रसाव के जर्मन कुंत्री हाफ मेदा सम बोलते हैं मरमन कुरिया मिदेन को सा हाफ मेदा है सामु किमिच तंकोले फहात उन दि जेताए मेतरे गन मिहिर जर्मन कीपर फीवर हुलिया कुंत्री मिहार को सा हाफ तरे जेता बोलते हैं हाफ में गैप मेतरे तंकोले अरमति जिला अरमति मा बोडा सरमति नगा कार्य हुर कुंत्री मिदेन वीट संग एना कंट्रा को कुरमति अपर को सा कुंत्री गन अट्टू हाफ मेतरे वदे तंकोले फहात हाफ के मेदेन है सामु किमिच दिव किमिच मेतरे हुर कुंत्री दिन बोला कुरिया दिए पेनल्टी एरिया कैरिंग हावेट्स हावेट्स तंकोले फहात दिन बोला अनके सरमति दिव अरमति मिहिर वीट्स बोलते हैं पेनल्टी दिन कुरिया जिला कुरमति बार नंबर का नट्टू आ देंगे कुंती का कुरी में बाद देंगे नट्टू आ फाहत तंगोले फाहत उन्हें बोला कुंती का जीव सेन ना सेन पेनल्टी करना दिमाग दे डीएर के लिए हुस्को होने कुंती फर्स्ट नंबर कुंती पेवल विच कुरी फोन वाली बोला मिफार में दिया ने कैस कोनर रखा जर्मन लिबे तीमन कोनर में चुके तीमन कोनर फुर्तमा फोन नवाविस मिनट कुले इफ एक एक नतीजा जर्मन दंड जहाफ फाहत वाला प्रसाव दंड जहाफ ने प्रसाव के नंबर कुंती अलमेंशिया कमेंशिया दंड लिफे कोनर नगा देनी Kimmich, kalau negara kari kemarin kalau yang beri Jerman kehin kuntri evis, ini mereka penalti itu yang warna ni. Rasau ke hand number bekuna beri kuri kemarin kalau yang golnya di mana pelan itu. Tiris menit kuli fa the team kuri komiti mesin dari half. Jerman ke hatar fahing, hakun teri ngau tu gol dari saya. Jadi negara ding corner gol dari atteri entah kalau fahatun kerasa hakun teri bolon defa kru bola penalti atteri final dia jari mati. Bola atteri kuriya main inform wheel bat lagi mau as kuriya jil left defa kru kuriya final bah. Medan kau carrying Jerman kru teri carrying final dia bola atteri kuriya dewa tu masih kuriya ni team kau chong chong bola kru teri berdam tu Jerman kru teri atlaf. Emi kau half teri macam dia entah kalau fahatun tim bola mifar lebih jangan kau chonga bola bola lebih tu nih Jerman kru teri ya bola lebih tu masih kuriya ni wits wits bola atlaf kuriya defi. निमिंचा निमिंचा कुरिये दिन बोल जर्मन हाफ तरह जर्मन कुंत्रे डी एर कैरी अत्लें पिप होवलोविच है डी एर कैरी और कुंत्रे के न कुरिये गाने फ्रांस में टिम्पेनेट्री कैरी और कुंत्रे हाफ के गाने का मेदिंग है सम जर्मन हाफ तरह दिन बोल अत्लें बिच कुरिये दिन मेदिंग का कैरिंग एस मेदिंग होटेस को कुरिये दिन बोल अत्लें कुरिये वरब बारंग अब दे दिए नंबर मुसालिया एस पेनेट्री तेरे दाहुरी कुंत्रे दें जी बोल मिफार अनेक एस कुंत्रे का जी फली बिच चौंगा चौंग मेदिंग का कैरिंग बोलता है बैक और तंग कुले फाहत को हुरी मेदिंग का कैरी कुंत्रे दिन बोल मिफार गेदी जी जर्मन कुंत्रे अत्लें कीमिच्चा Kimi Kuria, senza kal kari huri kuntri ya di fi ni mencha. Mencha tangkal fahat bola atlet Kuria tangkal fahat ding bola anik kas mi dini witsa. Mit fahat je tay di fi ene Kuria ngari mati ding bola Kimi. Atlet ngari mati Kuria ngas hafu meja sama sena. Adi huri ha kuntri mihar mati kursau half tre keeper of Eva German keeper of Eva huri ha kuntri kursau half tre dan je he tolen fortuna mi mer Kuria Kimi atlet senza kal gane farin di fi Pavlovic Pavlovic bola atlet meteren Kuria ding bola atlet mitani dia number Musalia Kuria gol Kuria fana ben far wes atlet fi kursau kuntri bekuna atlet Kuria ding bola chongu chongu atlet meteren tangor fatin ding bola atlet Kuria mitani kursau kuntri gol Kuria fana bol kari huri German kuntri ga jif German kuntri bola atlet meteren jela Kuria penetre wandan dia dia kuntri nama number Kuria fana wali bola difa gol devla fana क्या जब बीच कुंडल के जर्मन कुंडल बोले जहाँ जो हुआ इन्हें वेट टोनी अधिवारण नहीं तो कदम लिबों बोले जर्मन हम हुस्को लिबोनी नवार नंबर कुंडल सेन ना बोले अर्मेटिंग बोल दिया को तो बस बेर बीच वारा रंगल फुर्सत है आलोकों ने हम ही कुरी गोल तेरे को बोल नहीं रहे नहीं हाँ विस रंगल जर्मन का टीम का एरिया तेरे लिए बने एम्बर रंगल फुर्सत फॉर्म व्हील के अंगमति फलांगों सामने कुमिसर का लेयर ने तांगों में फेंक दिया देख मैं बोला दिफा कुरी फंवे देन बेट्टी के बीमो तेरे गालों में ही बने कुलंत्रे के आगे जेहूनी है कुलम फर्श आगे कुलसाव हाँ

0: হরির ইথুরু আমদানি হোদমগে গোথুং আসলো আনে বেবর খান্ত কুরম ফ্যাশন দে একে থেরেং হাম এ সাইড হাসল মি হাম শোল বিকা এর মালয়েশিয়াগে হরির আলগন মে হাম শোল তাকা স্কার্ফ কেনেস হাম কলগে অনলাইন কো বিএফআর ফ্যাশনি হিজাব বক্সেস কে গতগা ফরতাম
1: বিএফআরি ফোলা কুরং কুরি কোন কমেতো আলগন মে ফরতাম হাম অনলাইন মি বিএফআর গতগা ফাশাগেন কুরিয়া গেন্দামুং গস মি বিএফআর ফোলা কুরম টাকা এমএ ফরতাম মালেগ হাম হিজাবি এমভি গ আউটলেটে হুলুম গ মাসকে কুরি এগত মি আলগন মে মি বিএফআর ইন লিবুন নাফা ইন অনলাইন বিএফআর ইন লিবুন নাফা আই গে ইতুরুং মি মাইম্বে ফেং গ ফরাতুন লিবুন এহি তেরে কামা এককো এমএ ফরতাম মালেগ হিজাবি এমভি গ মি ফিজিক্যাল আউটলেটে হাম হুলুবি এগে তেরে মি আরো মি মালেগ আলগন মেঙ্গে দে আউটলেটে হুননানে এই মি গাললুগা মি হিজাবি এমভি গ ফিহার এমএ ফরতাম আলগন মে হুলুই ফিহার দেন মাজিদি মাগুগা মাফান্নুগা হুননানে আলগন মেঙ্গে দেওয়ান ফিহার এই হিজাবিয়া দেন বিএফআরি গ দিমাবি গঞ্জে হুন তাকাকি কোবাতো আলগন মেং এমএ মি হামা কোরিমস দেন নই ফাদে আলগন মে নাকি অনলাইন বেসড মি বিএফআরি এ ভিমা মি আলগন মে না মি মি মুদ্দতু গদিমা এমমে বড় গঞ্জে হোম কি আলগনমে ফাশাগেন আয়রুগ হাদা ফেং ইনস্টাগ্রাম পেজ মি দিমাবি টেকনিক্যাল মাসল তাকা হরে আলগমে না গেল্লুনি হে গ্যাগনকা বিহিহাস ফলোয়ারুঙ্গে পেজ এম অনলাইন কং আনেক্কা আলুং এমবুরি এভারুগে মি আনে অনলাইন কাস্টমার বেস এ হোদুমুগ এমমে বড় গঞ্জে হোম দিমা বিদেন এ ইতুরুম মিহার আলগমে না দিমাবা এমমে বড় গঞ্জে হোম কি মি ডোলা রাজ্যে বেড় মুদা গাতুম বেণু বা ডোলার নলিবুমা এগে ইতুরম মি ব্যাংক থ্রু কো মি পার্চেস কুরমা মিহুন্ন রেস্ট্রিকশনস তা এ মি ওগুত মি হরি গঞ্জে হন তাকা
0: বিএফআর মি দাতুর গা দিমাবি এম এ উফাবি দো হাকি কো বা তো আলহামদুলিল্লাহ এম এ ফুরে তাম ফিহার হুড় ওন্দোস এবার উফাবি দো হে দেং আনে হাম এগত দেওয়ান ফিহার হুড় ওন্দো হোস হাম ওয়ার উফাবি এই আনে এমএ ফাহাগ কলেওন বিজনেস কে এমএ উফাবি দে দোহাকে আল লাভ ইয়ার ফ্যারিয়া ফাশাম বেনু ওয়া পেফুল না দেনা নাসেহাতে কি কবাতো আলুগানি গে এমএ বড় নাসেহাতে কি ফাশা আসে পারফেক্ট কন্ডিশন পারফেক্ট টাইম আনে ওয়েট নকরা আসে হাম ফাশা আসে ফাশা লিমে ইংগেনি এগেন আদি মিসালক আনে বড় মিসালক প্রফিট ওয়ান্যামস নোয়ান্যামস এ ফেশিম আরে মিসালকে আদি ফেলভিয়াস বার বড়তে লেসনস তাকে এগেন লার্ন ওয়ার্নে সো কৃষ্ণমন্দা হরিহা কামে ভিয়াস এক কামে ভিয়াস দে কামে ভিয়াস হাম ফেশং এ এম বড় এ নাসেহা তাকে তেন দেওয়ানি কামে কি রিস্ক তার নাগে গেনে ভিয়া ফ্যারিগা প্রফিট ওয়ানি ফুরতাম কল প্রফিট নুইম আরে এহা বড় দেরাবে এ খাল কান্ত কার নোড়ে বড় হাম ইতর রিস্ক তাকে নাগা আর খেরিগেন খরিমত লাগেন উড়িম হাম ইনশাল্লাহ প্রফিট সাকসেসফুল ওয়ানে
1: আলগুন আল্লাহ বিএফআর এ ফাশা বেফুন দে নাসেহতা কি দেন আলগুন মে মিহার মি মাম পার্টনারশিপ এ ভিম পার্টনারশিপ এক দঞ্ঞা আমা এব্বে ফলক আনেব্বে ফলক এ ট্রাস্ট কুরাশে মি দেবে ফুন গে মাশফারা গে মাতিং হামা মি রাঙ্গালু বিএফআর এ কুরেবেনে ইরাদ কুরেবিয়া দেন মি কেরিগেন একামা ভেগেন কুরিমতি দাফিয়া ইরাদ কুরেবিয়া হামা কামিয়াব ওয়ান আনে মিয়ার দেম ফিরিম মি বিএফআরি ফুরতম ফাশাগেন আয়রুগা মি মে ফুরতম ফেশি মি আলগন্ড মি কল মি মালে ঘুরেগে এর আলো নাং হেন ঘুরি মি মালয়েশিয়া কিয়াবা দেন এরুয়ে সামা মি কমিউনিকেশন না দেন আলগন্ড ফুদেবরকং আকামক বি মি শোল বিএফআরি গে তেরিয়া মি ফিরিহানে গে কত ঘুরেগে নিকুন্না একামক কোয়েস মি আং হেনুং এদিন হিবারা এ সাপোর্ট গে সাবাবুং আসতো মিহারু মিহুরি মি আলগন মেঙ্গে মি বিজনেস মিতানা আস্তু মি হুরি ওয়ারং অমুগে এমমে বড় শুকুরে হাগগনে সাম আলগন গাং হেনুন না মে মা মি আস্তু এদিন হিবরগে সাবম মি বিএফআর ফেশুনি বেস একম মি আলগন আং হেনুন ওয়ার বড় শুকুর আদা কুরম মি ফুরসাতু গাস্তু
0: আলগন আস্তু হাইলাইট কলম বেরনুম ওয়ে আলগন মেঙ্গে স্টাফ অন নাকি হস্তি ওয়েহি আমা আলগন মেঙ্গে ফিহার থাকু গা হুনানি হস্তি ওয়েহি আং হেন পেফুল দেন গ্যাগনক দে ফিহার মতে আলগন মেঙ্গে মিহার স্টাফ আনে এমপ্লয়মেন্ট কে দশকে এবোলে মিহার 11 স্টাফস ইনক্লুডিং দেন মিহার ডেলিভারি ওয়েস ইনন ডেলিভারি স্পট আনে ফুরতাম লাইক থার্ড পার্টি এগে গত আলগন মেং ডেলিভারিস তা খোলি এখন মিহার হাম আনে ফুল টাইম ডেলিভারি ಬೇಫೊಳಕುವೆಸ್ ಹೊಣ್ಣಾಣ ತೆಂಗ್ ಅಣೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಬೇಫೊಳಕ ಎಕ್ಕೊಸೋ ಟೋಟಲ್ ಅಳಗಣ ಮೆಂಗೆ ಅಣೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಶಕ ತೇರ ಬೇಫೊಳೊಮ್ಮೆ ಹಾರೋಳೆ ತೇರ ಸ್ಟಾಫು
1: ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಕ್ಕೂ ಮೀ ಫಿಹಾರೆಯ ಹುಳುವಮ ಅಳುಗಳ ಮೆಂಗ್ ಅಸ್ತು ಮೀ ನಿಮ್ಮಿ ಅಸ್ತು ನೆಗಿ ಬರಬೋಡು ರಿಸ್ಕೆ ಮೀ ಸೀದಾ ಅಳುಗಳ ಮಣ್ಣಕ್ಕವೆ ಸ್ನೇಹಂಗೆ ಕಿಹಾಬೋಡು ಮೆಮಣಿ ಮೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫರಾತು ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವೆ ಮೇಲೆ ಬೇಣಿ ಯಾಕಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮ ಮೀ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಂಗ್ ಅಳು ಮೆಂಗ್ ಅಸ್ತು ಕುರಿ ಹಿಸಾಬಕ್ಕಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಣಕ ಮಿಬಣ ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ವಿಹೆಂ ವಿಹಿಹಾಸ್ವರ್ಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಹುರೀಮ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗ್ ಹಮ ನೆಗಿ ರಿಸ್ಕೆ ಮೀ ಫಿಹಾರೆ ಮಾಲೆಗ ಗಾಯಂ ಕೊಫಿಯಾ ಇತುರ ಫುಳಾವೆಗೆ ದಾಣೆ ಎಮ್ದೆ ಮಿಹುಂಗೆ ಹಮ ಮಶ್ವರಾಗೆ ಮತಿಂಗ್ ಅಳುಗಣ ಮೆ ಹಮ ಫಿಹಾರೆ ಫುರತಮ ಹುಳುವಿ ಮಾಲೆಗ
0: ತೆಂಬಡ ಹಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ನವಸ್ ವಿಸ್ನಾ ಫೈಕ ಶೋಲೆಕ್ಕಿ ಶೋಲೆಚ್ಚೈನಕ್ಕೆ ಏರು ಅಣೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ಚೆ ಬಲ್ಲಾಯಗೆ ಕೆನ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಣಲಂ ಬೇಣುವ ಐಟಮ ಕ ವಾತೀವೆ ಬೇಫುಳ ನಮಸ್ ಫಸೆ ಹವಾಣೆ ಗೊತ್ತಲ್ ಅಣೆ ಕುಡ ಫಿಹಾರೆ ನಮಸ್ ಹೊಳುವ ಲೀಮ ಕಸ್ಟಮರು ನಮಸ್ ಫಸೆ ಹವೆ ದಾಣಿತೀವಿ ಹಮ ಎ ಮಶ್ವರಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತು ಫಿಹಾರೆ ಹೊಳುವ ಲಂಗ್ ಅಸ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಳಗಂಡೆ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರ ಅದಾಕರಂ ಹೇಳುವೆ ಅಳಗಂಡೆ ಹಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಎ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಅಸ್ತು ಮಿ ಕುರಿಯ ದೇವಣಿ ಅಣೆ ಅಳುಗಣಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಂತಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಅಸು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ವೆಫ ಮಿಹಾಯ ಹಿಸಾಬವೆಸ್ ಹಮ ಕುರಿಯ ಮಿತಾಣಿ ಅಳಗಣಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವರಬಡು ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇತೀವೆ ಹೆಮ್ ಅವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದಾಖುರಂ ಬೇಣುವೆ ದೆಂಗ ಅಳುಗಣಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉನ್ನ ಅಣೆ ಕುಡೆ ಇರೋನ್ಸುರವೆಸ್ ಹಮ ಅವರಬಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಐ ಗೆನೆಸ್ ಅಣೆ ಅಳುಗಂಡ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ರಿಹಾ ಹಾಕಮೆ ಗೆಹಿ ತೆರೆವೆ ದಿ ಎ ಹುರಿಹಾ ಲೆಸನ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ಲರ್ನ್ ಕೊದ್ದಿ ಹಮ ಅವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದಾಖುರಂ ಬೇಣುವೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪೆ ದೆನ್ ಅಳಗಣಿಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಣ್ಣ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ ಅದ ಕೊಲಂ ಬೇಣುವೆ ಏ ಗಿನ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಮ ವರ ಬಡ ವರ ಪೂರ ಮಸಕತೆ ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಹಮ ಫಿಹಾರಾಗ ಅಣೆ ಮಸಕೆ ಕೊರಾ ಕುದಿಂಗ್ ಹಮ ಎಕ್ಕುದೆ ನವಸ್ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ ಅದ ಕೊಲಂ ಬೇಣುವೆ ಹುರಿಹಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಣ್ಣ ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಣ್ಣವಸ್ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ ಅದ ಕೊಲಂ ಬೇಣುವೆ ಏ ಅಳಗಣಿ ಮೇ ಫುರತಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ವರ ಫೆಶಿ ನಮವೆಸ್ ಮಿಹಾರ ಹಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಾದಿವಸ್ ಇನ್ನಾಣೆ ಕಮಕು ಎಸ್ ಮಿದು ಹಮೆಯವೆಸ್ ಹಮತಿದ್ದೇವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ ಅದ ಕೊರಮೆ
1: ಕುರಿಂಗ್ ಹಮ ಮೀ ಅಳಗಣ ಬೇಣು ಮೀ ಅಳಗ ಆಯ್ಲಾ ತಕೊ ಮಿ ಅಳಗ ಮೀ ದೆಮಿಯಂಗೆ ಆಯ್ಲಾ ತಕೊ ಹಮ ಮಿದೆ ಎಬ್ಬಾರದು ಮಶುಕುರು ದಣ್ಣು ಅಂದಾಗೆ ಇತರ ಅಳಗಣ ಮೆಂಗೆ ಮೊಜಫುಣ್ಣ ಫಿಯಾರಾಗ ಮಸ್ಕೆ ಕುರ ದೆಂಗ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಮಸಕೆ ಕೊಫ ಹುರಿ ಮೊಜಫುಣ್ಣ ಸಮ ವರ ಬಡ ಶುಕುರ ಅದ ಕೊರಂ ಬೇಣುವೆ ದೆಂಗೆ ಇತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಣ್ಣ ನಿಹಾರು ಎಸ್ ಮೀ ದೆವ್ವ ತರುಹೀಬ ಅಳುವ ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಫಶನ್ ಶುಕುರ ಅದ ಕೊರ
2: ಮಿ ಗೆನಸ್ತಿನಿ ವುಣದಂಕಾರ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಾಗುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಡೋಸವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೆಫ್ರಣವಸ್ ಶುಕುರಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಅಫ್ತಾಗವಿಸ್ ಮಿಫದ ಮುಳಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಕಾಯಕು ಬದ್ದಲುಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ವಕಿವೆಲಾಣ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ ಬುಣದಂಕಾರ
3: ಬುಣದಂಕಾರ ಬುಣದಂಕಾರ
4: ಮುನಿಫೂಹಿ ಫಿಲುವಾದಿ ಮೌಲುಮಾತ್ಗೆ ಖಜಾನ ಮುಸ್ಸಲಿಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಇತುಬಾರು ಕುರುವೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ
5: ದೇಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
4: ಎಂಹಾಸ್ ಹತರುಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿಸ್ ನೋಯೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡಿಹ ನೋಯೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
6: ಮೇರು ಗಾಡಿನ ತಿಂಗಳ 13 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಗಾಡು